ताली तक झुमी तक ताली तक झुमी तक झाला आंबो तक झुकी तक ताली गेने तक नक तक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झुमी तक नक नक झम धरिता जग धरिता झन झाले कोकू धारी दाबू धारी गेटे ताली धरिता जग धरिता झन झाले कोकू धारी दाबू धारी गेटे झम

हे सुनो वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

इस अवसर पर सोने चांदी के सिक्कों के रूप में भगवती महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। रात्रि के समय घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। अपने मकानों को शुद्ध स्वच्छ करके खूब सजाया जाता है ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उनमें निवास करें। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सिया जी और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक किया गया। इस खुशी में अयोध्या के नर नारियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। प्यारे भक्तों, इस पावन उत्सव के दिन महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से मुंह मांगा फल मिलता है, खुशियां मिलती हैं और शुभ लाभ मिलता है। आप सबको दीपावली की बहुत

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो।

नम्र संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर हॉनटूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ugyanaz, Szona Csiria. उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए आप देखें ujala.nl।

Oh, Maria. फिल्म सागर का गीत आशा जी एंड एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन दोनों की आवाजों में आप सुने उजाला रेडियो पर। नौकेर आशा जी मदन मत किशोर कुमार राहुल देव बर्मन के साथ यादों की बारात। उजाला रेडियो है

0: हूँ, लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4 ला

हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। लता एंड मुकेश जी से आप सुने फिल्म फर्ज का गीत उजाला रेडियो पर। अब लता जी के साथ महेंद्र कपूर को सुनिए।

और छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, बताइए कि अब हम किधर जाए। फिल्म वो कौन थी, गीत के गाने वाले लता जी एंड महेंद्र कपूर। एंड लता जी एक बार फिर हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार होंगे मनमोहन सिंह।

0: से है
1: और तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम।
0: तेरी खुशी
1: लता जी एंड मनमोहन सिंह, फिल्म वारिस से आप सुने उजाला रेडियो पर।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

दोस्तों, बैठे गाना हंगामा का प्रोग्राम धीरे धीरे अब खत्म होने को आ रहे हैं। बदंग फॉर लाइव उजाला रेडियो, हम विदाई लेते हैं इस खूबसूरत बैठे गाना के साथ।

0: सुन वालो नमस्कार, ये है उजाला रेडियो का बैठगाना हंगामा प्रोग्राम। वेलकम बाय उजाला रेडियो ऑफ देश गजलगे जोंदाग मिडाग। और लीवे लाइस्टर्स, गा लेकर सिटे एंड गनीत फ्रॉम द म्यूजिक। अब आ रहे हैं एक जबरदस्त मस्त बैठगाना।
1: हरे

उजाला रेडियो पर आज के बैठक गाना हंगामा प्रोग्राम ये शाम अब समाप्त होने वाला है। सभी लाश को धन्यवाद। अब और एक आखिरी बैठक गाना आप सुनने को जा रहे हैं।

मृग के खाल पर बैठे अति सती लोगे, बकरे के खाल देखो पानी भर लाई है। गड़ के खाल सल

दोस्तों, हम यही उम्मीद करेला कि आज बैठक गाना हंगाम प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया, आप आनंद लिए हैं। अब आ गया है वक्त आज के लिए आखिरी बैठक गाना।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। ये है यू आर उजाला रेडियो का पैगाम और कुछ देर तक आपके खिदमत में कुछ मिले जुले संगीत पेश खिदमत है। वादा करो जानम।

वादा करो जानम, द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस, किशोर कुमार और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर की आवाज में आप सिलेक्शन अभी सुने हैं उजाला रेडियो यूआर के जरिए, और शहीद गुलजार आपकी खिदमत में हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत, और ऐसे में हो जाए कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में इज दिस लव।

कलेक्शन पेश की गई है सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाज। हमारे सभी श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। और ऐसे में तुझे देख

वो तुझे देख देख कर सोना जिया ढरक ढरक जाए। राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाज में आप नगमा सुने हैं। यू आर के फोन का नंबर है एम्स्टर्डम शहर में 02409908 07। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं, जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मृत्यु समाचार, मौत की खबर या कोई भी कार्य के वास्ते आप डायल कर सकते हैं 02409908 07 पर। शो मार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक। लीजिए पेश खिदमत है कहो ना कहो।

0: Ujala Radio, Radio. Du jane hai, doch, doch, doch.
1: लकी अली की आवाज में आइए अब एक सिलेक्शन सुनते हैं उजाला रेडियो के जरिए। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। जाने क्या ढूंढता है लकी अली की आवाज़।

लीजिए प्रोग्राम में पेश खिदमत है पेनास मसानी और तलत अजीज की आवाज। ये बहार कह रही है यही है प्यार का समा, मेरी आरजू पुकारे कि मेरे दिल रुबा है कहाँ।

Yes, my dear, I will never let you go. फिल्म का नाम दे दना दन, राहत फतेह अली खान और साथियों की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दो, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दो।

The Rocking Sensation, You Are उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं कुछ मिले जुले संगीत में। आइए अब सुनते हैं दिलबर, दिलबर। फोन का नंबर नोट कर लेना, यू आर का फोन का नंबर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर 3 दिन में 3 बजे तक 020 409 08 07।

तुम से मिलने के बाद दिलबर ओ लवली कैसा सर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर मिले जुले संगीत में कुछ अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुना रहे हैं आज युवा का पैगाम में सिर्फ तुम फिल्म का नाम है सिर्फ तुम सन 1998 का फिल्म 19

और एक तो कम जिंदगानी और ऊपर से और कम है जवानी, नेहा कक्कर उन्हीं की आवाज में और साथियों से आप सुने उजाला.nl इन्फॉर्मेशन के लिए।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है और इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजले के साथ। वो प्रोग्राम जिसमें बातें हम कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम से लुफ्त उठा सके। तो चलिए हुजूर, पहली गजल की ओर हम चलते हैं। पेश है

तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जगजीत सिंह की आवाज़ में आप गज़ल को सुने।

चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। पंकज उधास जी की आवाज़ में गज़ल को आप सुने। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गज़ल की दुनिया।

जब कभी साकिये मदहोश की याद आती है। गुलाम अली, हाँ गुलाम अली साहब की आवाज में आप सुने। हम बड़ी खुशनसीब है कि आप भी हमारा प्रोग्राम को सुन रहे हैं।

0: कि जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं, जवाब जिनका नहीं वो सवाल होते हैं। अगली गजल सुनेंगे हम।
1: एक महफिल में आपका इस्तकबाल है। गजल चाहे हमारी मौसीकी और अदब का हिस्सा हो, गजल बहा ले जाती है हमें खुमार के माहौल में। और जब गजल सरा हो चंदन दास, तो गजलों का हर मुरीद चाहेगा कि ये माहौल बरकरार रहे ता जिंदगी। क्योंकि चंदन दास की आवाज की लचक, अल्फाज की अदायगी और सुरों से आंख मिचौली खेलने के अंदाज ने इनकी एक अलग पहचान बना दी है, जिसे बार बार सुनने को गुनगुनाने को जी चाहता है। मैं जनाब चंदन दास से कहना चाहता हूं कि इस महफिल के हाजरीन तो खुशकिस्मत हैं, जो यहां मौजूद नहीं वो शायद कह रहे होंगे कि घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, घर मेरा काश तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज तो आती रहती। अब आप हैं, चंदन दास हैं, और है वो माहौल खुमार का, क्योंकि ये है एक महफिल।

सबको दुश्मन बना लिया मैंने और आपसे दिल लगा लिया मैंने। चंदनदास की आवाज में आप सुने गीत और गजल की दुनिया में उजाला रेडियो पर।

चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, चांद के बाद सितारों की तरफ क्या देखूं, तुझे देखा तो हजारों की तरफ क्या देखूं। पंकज उधास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है, ये गीत और गजल की दुनिया।

गुस्ताखी और बढ़ गई अपने ही ख्वाब में, फिर एक गुलाब रख दिया उनकी किताब में। मनहर उदास जी की आवाज में आप सुने गीत और गजल की दुनिया में। और आपको पता है ना कि आपके साथ साथ और हजारों लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जो कि हमारी खुशनसीबी है।

0: तुमने दिल की बात कह दी, आज चलो अच्छा हुआ। और गजल को आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में। सुनने वालों, अब इसी के साथ समाप्त किया जा रहा है।
1: Vanuit de hoofdstad.

पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये उजाला रेडियो है, सभी सुनने वालों को स्वागत है। इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आप लोग जो तैयार है तो हम भी तैयार है। इस तरफ उजाला रेडियो लेकर के प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। गीत और गजल की दुनिया साप्ताहिक प्रोग्राम है जिसमें गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम, ताकि इत्मीनान से आप प्रोग्राम को सुन सके और भी लुफ्त उठा सके।

जब मेरी हकीकत जा जाकर उनको जो सुनाए, लोगों ने कुछ सच कहा कुछ झूठ कहा लोगों ने। चंदन दास की आवाज में आप इस गजल को सुनें।

तीन साथी आप देख रहे हैं स्टेज पे, तो गिटार और संतूर, ये दोनों तीन चार घंटे बजाने के बाद थक जाते हैं, लेकिन हमारे जो तबला नवाज हैं सारी रात बजाएंगे, थकेंगे नहीं।

मैंने एक बार इनसे पूछा कि भाई क्या राज है, थकते नहीं हैं आप इतना तबला बजाते हुए, कौन से बादाम खाते हैं। लेकिन इन्होंने बताया नहीं मुझे। फिर हमने भी कुछ जासूस लगा दिए पता लगाने के लिए, और पता लगा ली। जरा राज की बात है आपको बता रहा हूं, आप किसी से कहिएगा नहीं। इन्होंने क्या किया है कि इनका जो दाहिना तबला है, राइट साइड का, उसके ऊपर इन्होंने अपनी वाइफ की फोटो बना ली। और जो बायां है, लेफ्ट साइड का, उसके ऊपर अपनी सास की फोटो बना ली। तो इनके साथ जो घर में होता है उसका बदला यहां लेते हैं।

लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लाइव रिकॉर्डिंग अनूप जलोता जी के आवाज में आप सुने, उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

इंतजार आज भी है, कहाँ हो तुम, ये दिल आज भी बेकरार है। भूपिंदर और आशा जी की आवाज़ों में आप इस गज़ल को सुनी। फिल्मी गज़ल और पेश आई है फिल्म एतबार में। जगजीत सिंह हिस्सा लेंगे अब।

जो बीत गया गुजर क्यों नहीं जाता। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

0: बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने, और ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया पेश है।
1: एक ताज़ा गजल पेश खिदमत है, ये गजल आपको जरा आहिस्ता चल की याद दिलाएगी।